0: Julie.
1: 1-1.
2: 刚刚的这个勾手的长球发出去之后打发抢的效果还是非常好的。
1: 1-2
2: 拿下了第一局之后啊，也带动了张安第二局开局的表现，整个人会越打越松弛。巴特拉叫暂停了，因为这个比赛呢，第一轮是5局3胜，其实前一局半是非常关键的。
3: Okay.
2: 巴德拉可能也觉得如果这局咬不住0-2落后的话，比赛就不好翻盘了。
3: और ज़्यादा एंगल में मत मारो, नॉर्मली मारो, सीधा चलेगा। तुम एंगल में कोशिश कर रही हो ना, तुम मिस कांटेक्ट हो रहे। नॉर्मली मारो, सीधा ही मारो, चलेगा। हाँ, फॉरहैंड में मारो, बीच में मारो, कहीं से भी मारो, ज़्यादा एंगल मत लो। फिर रैलीज़ में खेलते रहो, दो रैली खेलो, इट्स बेटर। ऐसे एक बॉल में मत जाओ एंगल के लिए, सिंपली प्ले।
2: 比赛在女单的8/5区，中国选手王艺迪、日本选手大藤沙月，都是这个区当中的大种子选手。
3: 啊，干嘛干嘛？